तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, द लास्ट ऑफ द सिलेक्शंस फ्रॉम मूवी बैजू बावरा, क्लासिकल सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, आई कैंट गेट tired of listening to this song maybe several times in a row, but that was the nature of the songs of the golden era of Bollywood music. The next two songs come from movie Aan. Dilip Kumar main lead role, and Nadira, born Florence Ezekiel, she was born in Baghdad, Iraq, to a Jewish family. Debut movie for her. A quick sidebar, by the way. Initially, Nargis was cast for the role, but she left to concentrate on her association with RK Studios and Raj Kapoor. For a time, Madhubala was considered, with considerable lobbying by Dilip Kumar, because he had a romantic involvement with her. Both of them had romantic involvement, but that did not work out, and Mehboob decided to launch a newcomer, and that will be Nadira, unknown Nadira, and promoted her as a new star discovery. And it turned out to be really good. The two songs I want to play for you from this movie. First one is Rafi. Both of these are Rafi's solos. First one is Binak number 3 of the inaugural year of Binaka Gitmala. दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले. पिक्चर इन दिलीप कुमार एंड नादिरा. ही हैज कमांडियर्ड हर रॉयल बगी एंड शी इज विजिबली अनॉयड. नादिरा इज मेड सर्वेंट एंड मुकरी आर राइडिंग इन द बैक. एट द एंड ऑफ कोर्स दिलीप कुमार ब्रिंग्स हर बैक टू हर पैलेस. एंड सेकंड वन ऑल्सो पिक्चर इन दिलीप कुमार सिंगिंग टू नादिरा, हुम ही हैज काइंड ऑफ किडनैप एंड टेकन टू अ रिमोट प्लेस इन जंगल. मान मेरा एहसान अरे नादान कि मुझको तुझसे हुआ है, मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार. मेरी नज़र का धूप न भरती रूप, तो हुस्न होता तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार. एंजॉय द टू सॉन्ग्स.

वाह वाह, क्या गला पाया है, कमा खाओगे प्यारे। रानी साहबा, आप तो वकील साहब को प्राइवेट सेक्रेटरी रख लीजिए अपना। मैं वकालत में रखा है क्या है रानी साहबा, आमा वकील साहब, छोड़ो वकालत और पकड़ो ढोलक, फिर तक दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन था।